किशोर कुमार एवं आशा भोसले कंठे शुणु कार्यक्रम परवर्ती गीतटी कथाचित्र सीता और गीता।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है।

0: बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विम्बल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विम्बल्डन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी राउरकेला, समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी 6:05 आसंतु सुनिबा भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। शुणा तारिणी रंजन जेना कंठरू भक्ति गीतटी गीत रचना करिसंती मनोज महांती।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वनगमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

आकाशवाणी संबलपुर जुहार आंचलिक खबर पढ़ुचन तापस रंजन साहू। श्रीक्षेत्र पुरी नो एबा 16 तारीख गुरुवार महाप्रभु श्रीजगन्नाथंकर विश्वप्रसिद्ध रथजात्रा हेबा एथिलागी रथ तयारी काम शेष केपे पहुँचिछे। आयोजन अवसर 13 नंबर दिने महाप्रभु मानकु दशमूल महोषधि अर्पण कराजिबा इतारुतारु महाप्रभु माने पूरापूरी ठीक हेजिबे। शुक्ल वस्त्र छाड़िकरी महाप्रभु माने लाल वस्त्र पिंधिबे। भल हेबार उतरु अनवसर अवसर पहला थर लागि महाप्रभु मानकु तुलसी लागि हेबा। इतार सहते आज श्रीमंदिर नु चंदन सर्वांग समियाति घंट बाजवार सहते विजे कहाड़ी बाजवा। आयबा कायल महाप्रभु मान राजप्रसाद विजे 13 तारीख दिन घणा लगे 14 तारीख मंगलवार महाप्रभु मान नेत्रोत्सव सहते नवजौवन बेसती दर्शन देवे। 15 तारीख बुधवार श्रीजीव मान उभा जात्रा हेबा बोलकर सूचना मिली। ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी तरफ होइतिबार ओडिशा सिविल सर्विस ओसीएस 2026 प्रिलिमिनरी परीक्षा फल बाहरीछे। इदि 5690 जन प्रार्थी पास करिथिबार बेलके सेमानकर भितरे 1905 जन महिला प्रार्थी अछन। ई प्रार्थी माने आबा अक्टोबर मासे हेबार केथिबार मुख्य लिखित परीक्षा देबे। परीक्षार विस्तार सूची खूब जल्दी ओपीएससी रो वेबसाइट थी बाहरबा। एनो जने दिया जाय पारे जे जून 7 तारिख दिन प्रिलिमिनरी परीक्षा हेथिला। शिक्षा व्यवस्था उपरे केनसी इलाकार सामग्रिक प्रगति निर्भर करसी। सेथिलागि एकविंश शताब्दी शिक्षा संगे रोजगार आधारित पाठपढ़ा उपरे खास ध्यान देबारके पड़बा बोलकरी केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पाललहड़ार केन्द्रीय विद्यालय स्थायी कैंपस भूमि पूजा और अस्थायी कैंपस के उद्घाटन करिकरी मंत्री श्री प्रधान कहिछन पाठपढ़ा खाली बही भितरे सीमित नाय रहिकरी रोजगार भित्तिक आर दक्षता आधारित हेबा। छात्रछात्री मानकु गुणात्मक आर आधुनिक शिक्षा देवार्थी केन्द्रीय विद्यालय बड़ भूमिका रहिछे बोलकरी केन्द्रमंत्री श्री प्रधान कहिछन। राज्य सफेई मित्रंकर अवदान के सम्मान जनाबार लागि आर सुरक्षित आर जांत्रिक स्वच्छता व्यवस्था के तहकाबार लागि आयबा 14 तारीख थी राज्यर सबु सहरांचल स्थानीय संस्थानो नमस्ते दिवस पालन करा जिबा। ए बाबदे गृहार नगर उन्नयन विभाग तरफ सबु महानगर निगम पौरपालिका विज्ञापित अंचल परिषद के निर्देश जारी करा जायछे। केन्द्र सरकार सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय और गृह और सहरांचल व्यापार मंत्रालय तरफ ए दिवस पालन करा जायछे। ओडिशा पर्यटन उन्नयन निगम ओटीडीसी 2024-25 आर्थिक बछर लगी 1,17,00,000 टंका लाभांश राज्य सरकार को देछि। ओटीडीसी रो परिचालन निर्देशक दीपंकर महापात्र उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री प्रभाती परिडा को लाभांश चेक देछम। ई अवसर मंत्री ओडिशा पर्यटन भित्तिभूमि और सेवा प्रदान के अयतका बरकस करबार लगी ओटीडीसी रो चेरेस्टा के प्रशंसा करथिले। राज्य ग्राम्य उन्नयन विभाग तरफ बरगढ़ जिला पदमपुर ब्लक नो 140,83,00,000 टंकार प्रकल्प लोकार्पणार भित्तिप्रस्तर स्थापना होइछे। आरएनसी पड़िया नु होइथिबार कार्यक्रम थी ग्राम्य उन्नयन और पंचायतीराज मंत्री रवि नारायण नायक इटाके उद्घाटन करिछन। 51,06,00,000 टंका खर्चाती 8 नुआ प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापना करा जाइथिबार बेलके पाखापाखि 99,77,00,000 टंका खर्चाती तयारी 15 प्रकल्प लोकार्पण करा जाइछे। राज्य सरकार हस्तंत हस्तशिल्प क्षेत्र सर्वांगीन विकास बुनकर आर कारीगर मानकर आर्थिक उन्नति आर राज्यर समृद्ध पारंपरिक वस्त्र के विश्व बजार थी खास परिचय देवार उपरे प्राथमिकता देउछन बोलकर समवाय हस्तंत आर बयनशिल्प मंत्री प्रदीप बड़सामंत कहिछन। पुरीनो बयनकार गोटे शोरूम उद्घाटन करी श्री बड़सामंत कहिछन इनो देश विदेश नु आसुथिबार लाख लाख पर्यटक आर श्रद्धालु माने राज्यर प्रसिद्ध हस्तंत वस्त्र गोटे ठाने पाइपारबे।

दक्षता विकास वैषयिक शिक्षा कमिशनर सचिव भूपेन्द्र सिंह पुनिया देवगढ़ जिलानो कार्यकारी हेतिबार भिन्न भिन्न योजना और प्रकल्प मानक प्रदर्शन करिछन। जिला जोगाण विभाग तरफ बमफरडा ग्राम पंचायत कार्यालयनो पीडीएस हिताधिकारी मानक संगे आलोचना करबार सहित बारकोट ब्लॉक कलागान दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र परिदर्शन करिथिले। संबलपुर महानगर निगम तरफ सहर लगाण बर्षाती होता नुकसान बाबद आकलन कर सूचना अनुसार महानगर निगम 20 वार्ड प्रभावित होता आर इति 2,90,00,000 टंकार नुकसान होता आकलन कर राज्य दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय थिबारनु केतरा जागानु हालकानु मध्यम धरणर वर्षा होई जाइछे। एबे 24 घंटा भितर सुंदरगढ़ नुआपड़ा सहित 9 जिला के कमनु मध्यम धरणर वर्षा लगी येलो वार्निंग जारी कर कटक आर खोर्धा जिलार गोटे दुईटा जगानु जबरनु अति जबर वर्षा भावलकिरी भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी कर सियाड़े हीराकूद जलभंडानु आज सकाल 6 8 गेट देकरी फी सेकेंडती 149,256 घनफुट पानी छड़ा जाथुवार बेलके 48,951 घनफुट पानी जलभंडार के आसुचे। ए समय अति जलभंडार जलस्तर 612.52 फुट रही। एथनी आंचलिक खबर न शेष होगा आर बेल आंचलिक खबर शुनिपारे राति 7:02 थी जुहार।

0: उपेत्य ह्यः ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान् न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन विमानस्थानके प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतं कृतवान् भारतीय समुदायस्य बहवः सदस्याः अपि तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतवन्तः प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशे स्थितान् प्रवासी भारतीयान् भारतस्य समृद्ध सांस्कृतिक रिक्थस्य निरन्तरं संरक्षणाय प्रशंसितवान् सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे असौ स्वागत समारोहे प्रस्तुतानां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणामपि प्रशंसाम अकरोत् भारतीय नौसेना अद्य आंध्र प्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे स्वीय षष्ठम प्रोजेक्ट 17A इत्यस्य अंतर्गतम स्वदेशे निर्मितम युद्धपोतम INS महेन्द्रगिरि F-38 इति पूर्वी नौसेना दले समावेशयिष्यति अस्य समारोहस्य अध्यक्षतां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः करिष्यति अयम् समारोहः भारतस्य रक्षा क्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः तथा स्वदेशी युद्धपोत निर्माणस्य दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति समावेशन समारोहस्य पूर्व संध्यायां विशाखापत्तनम नगरे आयोजिते बड़ा खाना इत्येतस्मिन् भोजक कार्यक्रमे नौ सैनिकान संबोधयन् रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः हिंद महासागर क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रमुख संरक्षक रूपेण भारतस्य भूमिकां पुनः प्रतिपादितवान् असौ परिवर्तमानं वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यं दृष्ट्वा राष्ट्रस्य सामुद्रिक हितानां संरक्षणाय तथा त्रिवार्णिक ध्वजस्य गौरव रक्षणाय भारतीय नौसेनायाः योगदानस्य प्रशंसाम अकरोत् भारतं हिंद महासागर प्रदेशस्य प्रमुखं उत्तरदायी राष्ट्रमिति प्रतिपादयन् रक्षामंत्री अवदत् यत् अस्मिन् प्रदेशे शान्तेः स्थिरतायाः तथा सुरक्षित सामुद्रिक पर्यावरणस्य संरक्षणं भारतस्य उत्तरदायित्वमस्ति इति भारतीय रेल मंत्रालयेन उत्तर रेल मंडलस्य 80+ किलोमीटर मितेषु दीर्घेषु रेल मार्गेषु स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाल्याः कवच इत्यस्य कार्यान्वयनाय 6+ कोटि रूप्यकाणां स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्याः परियोजनायाः उद्देश्यः रेल सुरक्षायाः परिचालन दक्षतायाश्च अभिवृद्धिः अस्ति अस्याः योजनायाः लक्ष्यम् अधिकजनसंकुलेषु तथा रणनीतिकदृष्ट्या महत्वपूर्णेषु रेलमार्गेषु स्वदेशी सुरक्षा प्रणाल्याः विस्तारः अस्ति कैलाश मानसरोवर यात्रायै तीर्थयात्रिणां प्रथमं दलं ह्यः उत्तराखण्ड राज्यस्य पिथौरागढ़ मण्डलस्य लिपुलेखा मार्गेण चीन देशे प्रविष्टवान् सर्वान् आवश्यकान् प्रवासान् सीमा औपचारिकतां च समाप्य ITBP इति भारत तिब्बत सीमा आरक्षस्य अधिकारिणः सीमायां स्थितेभ्यः चीनदेशस्य अधिकारिभ्यः यात्रिणां समूहं समर्पितवन्तः फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ संयुक्त राज्यामेरिका देशस्य इंगलवुड नगरस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे द्वितीयायां प्रागुपांत्य चक्रे बेल्जियम देशं 2-1 अंकहि पराजित्य उपांत्य चक्रे स्वस्थानं सुनिश्चितम् अकरोत् इति वार्ताः
1: आकाशवाणी राउरकेला समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी सकाळ 7:00 तबे आसंतु श्रोता बंधु सुनि नेबा आजिर अधिवेशनरे प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रमर संक्षिप्त सूचना सकाळ 7:25 रे सुनिबा चॉकलेट ऑन वाकअप संपत्ति समुदायर एहार नियंत्रक मानंगर नुहे उपस्थापना मेरिनोर कुल्लू परे परे 7:31 रे प्रचार करिबु विकसित सहर आजिर विषय रहिछि आम सहरर विकासरे प्रत्येक नागरिकर भूमिका एने आलोचना करिछन्ति ज्योत्स्ना नंद एवं देवस्मिता पाणिग्राही कार्यक्रमटिको प्रयोजना करिछन्ति बसंत कुमार स्वाई सकाळ 8:30 रहिछि श्रीक्षेत्र माथुरी आजिर विषय रथयात्रारे सेवकमानंकर भूमिका कार्यक्रमटिको प्रयोजना करिछन्ति प्रदीप्त श्रीचंदन कार्यक्रमटि शुणा आकाशवाणी कटक केन्द्ररु परे परे 8:45 बणपाहाड़ गीत कार्यक्रम क्रमरे शुणा साद्री गीत

0: सोचना सीख।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, उपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज

0: की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टिल्ड फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिससे आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं।

0: पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा। सरकार ने कहा, हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दे, यादों से ऊर्जा ले, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा रात।

जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर।
0: देव आनंद।
4: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि

0: मैं इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
1: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
4: एक और आ गया।
6: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: सुनिए,
9: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: प्यार का।
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं।

गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्दे मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छे बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुन टुन।

0: समाया।
1: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुनटुन।
2: हाय हाय हाय हाय।
1: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
2: हाय हाय हाय हाय।
1: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

0: दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत

0: शिकायत कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज, अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: हेलो राउरकेला।
1: हेलो राउरकेला, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं आपके सुरक्षित है, आप कैसे हैं मैम?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अपना नाम बताइए।
1: जी मैम, सीताराम बोर से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी, तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: तेरे नाम तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, ये भी चलेगा।
0: कि आपके मन पसंद वाला गाना मैं सुना देती हूँ, डेडिकेट किसको करना चाहेंगे?
1: उत्तर प्रदेश की पुनर्हांडोवर की कुमकुम के साथ मुझे गाना सुनना है ना।
0: जी, ठीक है, आप जिनको डेडिकेट किए हैं सबको डेडिकेट कर देते हैं, स्पेशली आपके लिए ये सुंदर सा गाना प्ले कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कॉल
1: धन्यवाद
0: कीजिएगा।
1: धन्यवाद
0: जी
1: धन्यवाद
0: जी जी नमस्ते।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और लेकर आई हूं चित्रपट संगीत।

अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय

0: संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: तेरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तेरे नाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा था, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रज़िया सुल्तान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे कब्बन मिर्ज़ा की आवाज़ में, निदा फाजली के बोल थे, खयाम का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि

0: यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
1: जी
0: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना ज़रूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

संगीतकार A.R. रहमान। फिर तेरी कहानी याद आई, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की आवाज, कतील शिफाई के बोल हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल यार, रहमान का संगीत।

1947 अर्थेस फिल्म के गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं हैं, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं। तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत ज़रा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर इंतज़ार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर भी खामोशियों और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नज़रअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी। कौन सा ऐसा मौका आया जब दिल और दिमाग में द्वंद्व हुआ। वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज़्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोज़ाना आप क्या करते हैं, ये भी ज़रा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतज़ार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए, उसमें कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं, और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना, और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। ज़रा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है। कौन है हीरोइन पर्दे पर, ये भी बताइएगा, और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा। संगीतकार का नाम पता है क्या आपको? हेमंत कुमार।

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए ज़रा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतज़ार कब किया और कब किसी के इंतज़ार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़ें और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतज़ार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है। हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतज़ार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत, जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा बूझिए। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज़ दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढल कर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं, दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली ज़मीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमज़ोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टेंशन्स हैं, तनाव हैं, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, ज़रा बूझते रहिए। आपकी टिप्पणी हम

आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतजार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है, तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए, आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नज़रअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौक़ों पर दीप जलाते हैं आप, ज़रा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाजें हैं।

चितचोर फिल्म का गाना था, येसुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहाब पर्दे पर होते हैं। और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्यौहार के दौरान होती है, पर अपने घर के मंदिर में तो रोज़ ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा, तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं। बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका, जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी, तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज़्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज़्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं, जहाँ एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है, लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले, चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और ज़रा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि हाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब, तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से सुबह शाम उदास तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान सलाह या उपदेश की ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं, कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देकर कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का ज़माना बड़ा गज़ब का है, ज़रा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं, बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

भाई, किसी की मुस्कुराहट से आपका दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना। और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगू करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। ज़रा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए। उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या ना के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो ज़रा विविध भारती के फेसबुक पेज पर ज़रूर बताइए, और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहाँ पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना ज़रूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना ज़रूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफ़र में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है चुप न बैठ कर, हमारे दिल ने कुछ कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। भाई, आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया, करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतज़ार की बात करते हैं और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैयां मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूँगा, और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठ ही रहो मैं मनाता रहूँ, ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानियां रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी, और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहेली जरा कठिन है।

दो फूल फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी, हंसर जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार अबलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे, एक श्रोता ने लिखा है मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूँ तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है, ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे, आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तनहा होता हूँ तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूँ या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूँ, अखबार भी पढ़ लेता हूँ या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूँ तो चुप हो जाती हूँ, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हाँफने पर डॉक्टर तक पहुँचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाएं और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं।

भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं, जरा ये भी बूझिए आप।

0: भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराज़गी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है,
1: इंग्रजी और हिंदी रे दोपहर समाचार सुनिबे आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु। आम केन्द्र कार्यक्रम प्रसारित हो 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी कटक। प्रथमे आसंत सुनिबा आम केन्द्र ओडियारे संवाद किछ क्षण मध्यरे।
2: आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। द्विपाक्षिक संपर्क को रणनैतिक

0: भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा पशुपालन और डेयरी पर्यटन खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत स्थायी मित्रता समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों

0: के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच

0: ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुश्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद ता पूर्वर एक विज्ञापन।
4: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
5: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
4: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
5: जुआंगा ओ सांतालंक ठरु बंडा एवं कोयांक जाए

0: और सहकर्मी माने जो जगह रहे सेवानु को दायित्व दिया जाए जी से जगह रहे सेवाने जीवे से जगह रहे सेवाने मुतयन है और तांकर जो ड्यूटी होची सेती पाई फर्दर डिटेल ब्रीफिंग करा जीवो
1: पुरी श्रीमंदिर दशमी तिथि गतका श्रीजीव मान चकाबीजे नीति अनुषित होणसर घरे महाप्रभु को फुलरी तेल और ओस लगे महाप्रभु धीरे धीरे सुस्थ होगास शोवा अवस्था उठी बस महाप्रभु संपूर्ण सुस्थता राजवैद्य द्वारा प्रस्तुत दशमूल मुदक श्रीमंदिर गारद को हस्तांतर कर एकादशी तिथि आज यही औषध सेवन पर ठाकुर संपूर्ण भाव सुस्थ हो जमापड़ श्रीमंदिर रथकड़े महाप्रभु रथ निर्माण कार्य आगे चली आज रथ उपरक पवित्र कलश उठा अवसर में भोई सेवक मैंने अष्टम हरिपोल ध्वनि देवार परंपरा रही रथ उपर चका पड़ा दिन भोई सेवक मैंने शेष हरिपोल आंचलिक संवाद जनसंख्या वृद्धिजनित समस्या संपर्क में जनसाधारण को सचेतन करने लक्ष्य आज विश्व जनसंख्या दिवस पालन चलित वर्ष यह दिवस वार्ता रही आज एवं भविष्य युवपीढ़ी आशा एवं आकांक्षा को साकार करिबा जन्महार को नियंत्रण करने लगी विश्ववासी को सचेतन कराइबा दिवस पालन मुख्य उद्देश्य शुणु ए संपर्क एक रिपोर्ट
2: परिवार योजना लिंगगत समानता दारिद्र्य प्रसवकालीन स्वास्थ्यावस्था एवं मानविक अधिकार आदि विभिन्न प्रसंग उपर जनसाधारण को अवगत कराइबा उद्देश्य आज विश्व जनसंख्या दिवस पालन करा जाउछि 1998 मसीहा जुलाई 11 तारीख में जातिसंघ पक्षरु प्रतिवर्ष आज दिन में एही दिवस पालित होइयासुछि जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संसाधन श्रृंखला उपर गभीर प्रभाव पकाइथाय एक रिपोर्ट अनुसार भारत जनसंख्या वर्तमान 140 कोटी अतिक्रम करि जनसंख्या देश पाई उभय विपद एवं संपद भावे कार्य करिथाय जनसंख्यार भारसाम्य को बजाय रखाजाय प्राकृतिक संपदर सुविनियोग होइपारिले जनसंपदर सुपरिचालना संभवपर होइपारिबो जनसंख्या नियंत्रित करिबाकु प्रत्येक देश विभिन्न पदक्षेप एवं योजना कार्यकारी कराउचंती समग्र विश्वरे सर्वाधिक जनसंख्या विशिष्ट देश चीन को अतिक्रम करि भारत वर्तमान प्रथम स्थानरे रहिछि एही जनसंख्या विस्फोरण आगामी दिनरे देश पाई दारिद्र्य सह प्रगतिर मुख्य प्रतिबंधक साजिब बोली विशेषज्ञ माने मतव्यक्त करिछंती महिलांक शिक्षा सशक्तिकरण और परिवार नियोजन व्यवस्थार संप्रसारण सह दुईटी संतान उपरे गुरुत्व एवं प्रोत्साहन प्रदान करागले वर्धित जनसंख्या उपरे नियंत्रण रखा जाय परिबो बोली बुद्धिजीवी माने मत प्रकाश करिछंती ए संपर्क रे वरिष्ठ अर्थनीतिज्ञ डॉक्टर प्रभास मिश्र आकाशवाणी को प्रतिक्रिया रे कहिछंती
3: मानव संबल जटा विश्व विकास रे मध्य सहायक हबो देशर जेउ राष्ट्रर जनसंख्या जेते संबल अधिक सेमाने बेसी प्रगति कहिथांती तेणु आम चेष्टा करिबा जे आमर जनसंख्या को आमे बडन बोली न भाविकरि आमे किभलि भाबे जन साधारण बा सबु मानव आमर केमिति संबल हेबे एवं देशर प्रगति रे काम करिवे से नै आमे समस्त प्रचेष्टा
2: जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करी सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने दिगरे समस्ते संकल्पबद्ध होगा जरूरी द्वारा जनसंख्या विकास रे बाधक न हो विकास बाहक साजिब आकाशवाणी संवाद विभाग पक्ष स्मृति रेखा तारिणिया
1: महानदी जल विवादर समाधान पर उभय राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहमति प्रकाश करछंती एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ओडिशा सरकार प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ सरकार ग्रहण करछंती आधार में छत्तीसगढ़ महानदी ट्रिब्यूनल लिखित प्रतिश्रुति मागिछंती मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता 23 तारीख दिन धार्य करपूर्व लिखित प्रतिश्रुति प्रदान पर ट्रिब्यूनल छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश देखने श्री आचार्य भुवनेश्वर वर्षापा जमुवा विभिन्न स्थान में ड्रेन निर्माण सह कभर कर गृह एवं नगर उन्नयन मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देखते एक मास्टर प्लान प्रस्तुत पर आईआईटी रुर्की को निर्देश दिखाई राज्यर समस्त सहरांचल में मास्टर ड्रेनेज प्लान खूब शीघ्र कार्यकारी हो मंत्री ढेंकानाळ पौरांचल में कार्यकारी होता विभिन्न योजना संपर्क में जिला पौरपालिका कार्यालय सभागृह में खाद्य और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र समीक्षा करछन्ति केन्द्र और राज्य सरकार अनुदान में कार्यकारी होता विभिन्न विकासमूलक योजनार अग्रगति बाबत मंत्री आलोचना करछन्ति केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनार उपसचिव तथा केन्द्रीय प्रभारी अधिकारी डॉ गाभाली पराग हर्षद अध्यक्षत केन्दुझर जिलापा कार्यालय आकांक्षी ब्लक कार्यक्रम समीक्षा बैठक अनुषित बैठक में जिलार सतट आकांक्षी ब्लक विकासमूलक कार्यर अग्रगति संपर्क में विभाग अधिकारी डॉ हर्षद आलोचना कर जिले शिक्षा स्वास्थ्य मौलिक भित्तिमि सुधार पर गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण कर पांच वर्ष किंवा तदुर्ध सेवा पूरण कर

ग्राम रोजगार सेवकों संपूर्ण बरणी प्रदान पर जिलापा निर्देश दीजाई निर्धारित फर्माट्रे 15 दिन मध्य समस्त तथ्य प्रदान क्यस्तर एक समन्वित तथ्य बरणी प्रस्तुत करने उद्देश्य पदक्षेप पाणिपाग गांगेय पश्चिमबंग एवं पार्श्ववर्ती बांग्लादेश उपरे एक घूर्णिबलय सृष्टि होईछि एहार प्रभाव रे एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना थिबा आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु अनुमान करा जायछि सूचना अनुसार राज्य रे आसंता 7 दिन पर्यंत वर्षा होई पारे गत 24 घंटा मध्य रे खोर्धा जिल्ला पालीपटना ठारे सर्वाधिक 90 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि हीराकुद जलभंडारर जलस्तर आज मध्यान्ह 12टा सुद्धा 612.4 घनफुट रहिछि वर्तमान जलभंडारर 8टि गेट दे जल निष्कासित संवाद शेष पूर्व पुणि थे मुख्य संवाद विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटिर अपराधिक तदंत पर मुख्यमंत्री निर्देश भारतीय नौसेन सामिल है स्वदेशी निर्मित युद्धपोत आईएनएस महेन्द्रगिरी देयमुक्त नामलेखा द्वंद्व दूरपाई स्वतंत्र मार्गदर्शिका आणवे राज्य सरकार आज और भविष्य पर युवपीढ़ी आशा और आकांक्षा को साकार कर आंचलिक संवाद वर्तमान परवर्ती आंचलिक संवाद शुणिपारे संध्या 6:45।

0: दिल ही तो है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी साहिल उद्यानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको

0: कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: Thank you.

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम मन चाहेगी। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज़ सचमुच बढ़ाया करते थे, क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतज़ार किया था और हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज़ और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज़ और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाऊ खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन, और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार। गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी। और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमज़ान और इनके अन्य साथी। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एन आर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफ़र फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाह, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारू मित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओ मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मूमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूता पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, यह पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खां महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए पढ़िए।

0: बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
1: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
0: हाँ पीर बाबा।
1: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
0: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
1: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
0: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
1: कैसे?
0: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
1: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
0: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
1: बेटे रही माँ, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
0: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
1: क्यों भला?
0: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
1: अल्लाह, ऐसी जलील हरकत, तूने जान नहीं ले ली उसकी?
0: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
1: तो तू कहां था?
0: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
1: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
1: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
0: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
1: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहाँ?
0: अभी तो आपकी पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
1: और तेरे साथी?
0: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
1: देख रही माँ, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
0: हाँ बाबा।
1: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहाँ एकदम महफूज रहोगे।
0: जो हुकुम पीर बाबा।
1: अल्लाह।
0: बाबा
1: बोल बेटे।
0: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
1: हाँ हाँ बोल।
0: इस हकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
1: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह को

0: घने खम्बान दाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग बांगड़ियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजर करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाए। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाए। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुकुम अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: देवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुकुम अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोंडी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या अब डकैत और मुजरिमों को शर्म देने का रह गया है?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती है।
3: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
4: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
3: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है देवान जी।
0: हुकुम।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
0: जो हुकुम अंदाता।
1: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
3: घनी घनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, रहीम का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के पिलान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांधकर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, Welcome, Mr. Harrison. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया। हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से मिस्टर हर्सन, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सुबह का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हर्सन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
3: राम सिंह,
4: हुकुम अंदाता।
2: हर्सन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.
4: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
5: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
4: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंधाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पुख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
5: कैसी वारदात?
4: वहाँ अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
5: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
4: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
5: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
4: यहां मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
5: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
4: अच्छा।

0: अलविदा।
1: अलविदा। ईश्वर तुझे सफलता दे।
2: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: रहीम भाई, पानी। कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूँ करीमा। माल कहाँ है?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहनी दी से
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूँ।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंधाता को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रही भाई, चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा, आगे ये काम तुम लोग करना। फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना।

0: तमन्ना दिल में रह जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह
1: या खुदा, तेरी खुदाई।

0: पीर बाबा आप यहाँ?
1: पीर बाबा आपने जहमत उठाई, यहाँ मेरे मौला इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
1: आमीन। अलविदा बाबा।
3: तुम वैसे नहीं जा सकते।
2: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
4: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
5: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
4: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: Sound, camera, action.
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
2: अच्छा।
3: हम सब बहन भाइयों का

0: दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे, उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददिहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में, या बड़े बड़े वकील।
1: जी
0: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े, श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहाँ पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियाँ चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था, वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था, और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे, और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना।
1: जी
0: तो मेरा जो ननिहाल था वो, चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था, और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माता जी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में
1: जी
0: 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था, और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आँख खुली, और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो,
1: जी
0: प्रेमचंद हो, जितने भी हैं, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, और ये सारी चीज़ें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत, रंगमंच, वो हमारे खून में है। और सच पूछें तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाएं, हमें कुछ नहीं आता और।
1: जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा
0: जी
1: जीवन हमने लगाया है।
0: जी
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन लें।
0: जी बिल्कुल। संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल
0: फिल्म है आरती,
1: जी
0: रोशन साहब का म्यूजिक है, और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो
1: तो
0: मुझे
1: मुझे
0: याद
1: याद
0: आया।
1: आया। क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
0: जी
1: गीत।
0: आ

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो हैं तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ये जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज़्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी।
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज़्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज़्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कंपटीशन रहा हमेशा।
1: जी
0: जी। तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा

0: लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी
1: जी
0: शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ, क्योंकि देखिए जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
1: जी
0: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज़ की नकल नहीं कर सकते, है ना? तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे।
1: बिल्कुल
0: और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है, वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा, अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा, पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब
1: जी
0: नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूँगा। मैं वो बैठ नहीं सकते थे,
1: हाँ,
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको
1: फ्री
0: काम,
1: नहीं बैठे।
0: हाँ फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा, क्या कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले, नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा, इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के
1: जी
0: प्रति,
1: जी जी
0: कि इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं,
1: जी
0: नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है, लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है, कि
1: जी
0: कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं, कि मैं अभी पहली क्लास में हूँ, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है,
1: जी
0: और वही पूरी साहब में था।
1: जी

0: ओम पुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनकी जज्बात फीलिंग्स वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूँगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहाँ थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माई सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो ज़ारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लावल के कलाकार। उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीज़ों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूज़िक है।
0: जी, जी।
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूज़िक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूज़िक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज़ है, उसको सुनती हूँ।
0: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनाऊं? ये तो आपने
0: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है।
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
0: जी।
1: मेरी माताजी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुपकर क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी। उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच और माँ जिस तरह की शायरी करती थी, उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीज़ें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज़ पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी, तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काट दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल, जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहाँ जहाँ पढ़े पग संतन के वहीं वहीं भंटा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली
0: हाँ,
1: में
0: जी।
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे, और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देख रेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज़्यादा, तो काफ़ी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी कई मैंने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से
0: जी,
1: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊँ। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड,
0: इन सब के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नज़र में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
1: महानदी।
0: महानदी,
1: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहाँ पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीज़ों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुँच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहाँ पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज़्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।
1: जी, मेरी पसंद।

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीज़ों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज़्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं, तो पता नहीं कहाँ से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार

0: आते चले जाते हैं,
1: हाँ
0: वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
1: तो आपकी रचनाओं में जो आपकी किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं, या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूँ, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज़्यादा रहे?
0: बहुत ज़्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, ना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
1: जी,
0: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना। हाँ
1: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है।
0: जी,
1: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
0: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफ़ी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहाँ पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही
1: याद
0: आती
1: है।
0: माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे,
1: बिल्कुल
0: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, 2 और घर होंगे ज़्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपये आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं, मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी,
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी।
1: जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी।
0: जी

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिससे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही हूँ, छलांगे मारती है। ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना। आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है, जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द हैं कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूज़िक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा

0: मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा, खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
1: हर पलम सीखती ही जी, है। जी। तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
0: बहुत संघर्ष रहा है जीना, जो है ना, वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों को। एक ज़माने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
1: जी।
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए ताताई आते गए, तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ, मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद, मैं बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुँह फट थी थोड़ा सा इस मामले में, बोल देती थी,
1: आउटस्पोकन
0: थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा, एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो ज़रूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
1: जी।
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो
1: जी,
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे?
1: उनकी मेहनत
0: और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतु खैरा कोई भी बन जाएगा
1: जी,
0: स्टार
1: जी,
0: नहीं बनते हैं ना
1: जी। तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही हैं, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो
0: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं, शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो हैं ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत ज़रूरत है
1: जी। चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: जादू पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ चल दिए बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस।
2: श्रोता बंधु एतेबेळे जे शुणुथिले विविध भारती कार्यक्रम कार्यक्रम शुणुछंती आकाशवाणी राउरकेला केन्द्ररु आमर कार्यक्रम प्रसार कराजाउछि एफएम बेंड्रे 102.6 मेगाहर्ज जुगे। समय वर्तमान अपराह्न 5:00। शुणन्तु वर्तमान एक लघु आलोचना। वाकफ सम्पत्ति समुदायर एहार नियन्त्रकमानंकर नुहे। उपस्थापना करिछंती मेरी नूर कुल्लू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया।

0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गया जी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनिले हिंदी रे संवाद आकाशवाणी दिल्ली रो कार्यक्रम शुणुछंती आकाशवाणी राउरकेला केन्द्ररु आमर कार्यक्रम प्रसार कराउछि FM बेंड्रे 102.6 MHz जुगे श्रोताबंधु वर्तमान शुणन्तु आमर आजिर एवं आगामी कालिर प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम सम्पर्कित कितिटी सूचना आमर एही सूचना परे परे 6:10 एवं 6:30 शुणिबे देशात्मबोधक संगीत 6:55 आजिर प्रसंग राति 7:25 जिला हालचाल क्रमरे आजि शुणिबे नवरंगपुर जिलार हालचाल आकाशवाणी कटक केन्द्ररु राति 7:30 रहिछि कार्यक्रम बनानी रिले करि प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु राति 8:00 शुणिबे हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम सिने संगीत राति 8:45 समाचार संध्या रहिछि आकाशवाणी दिल्लीरु राति 9:15 शुणिबे विविध भारती कार्यक्रम राति 10:00 प्रचार करिबो कार्यक्रम गीत ओ गजल एहि क्रमरे आज शुणिबे गजल गायक जगजित सिंह कंठरे केतोटी गजल राति 10:30 लोकगीत कार्यक्रम शुणिबे संकीर्तन परिवेषण करिछंती सुग्रीवर किसान ओ साथी परिशेष राति 11:00 हिंदी संवाद रहिछि आकाशवाणी दिल्ली रो

0: दृढीकर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवती। तत्र तावत् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी सहैव न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्येतौ ऑकलैंड नगरे द्विपाक्षिक वार्तानन्तरं उभयोः देशयोः संबंधान सामरिक सहयोगित्वेन रूपांतरितवन्तौ। अनेनैव सह त्रिंशदधिक द्विसहस्र तम वर्षं यावत् उभय देशयोः वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 कोटि रूप्यकात्मकं विधातुं पञ्चवर्षीयं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। शिष्टमण्डलस्तरीय मन्त्रणायां प्रधानमन्त्रिणा गदितं यत् स्वकीयः अयं न्यूजीलैंड प्रवासः द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु केनचन ऐतिहासिक कीर्तिस्तम्भत्वेन सेत्स्यति। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिपादितं यत् हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं भारत न्यूजीलैंड देशौ प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुतः। उभय देशयोः मध्ये सम्पन्नस्य मुक्त व्यापार सहभागित्वस्य प्रशंसा कुर्वता श्रीमोदिना न्यूजीलैंड देशस्य अक्षिप्र प्रयासाः श्लाघिताः। सहैव तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः लेक्सिन वर्यस्य कुशल नेतृत्वाय च धन्यवादः प्रकटितः।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
0: अत्रावसरे न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा आधिकारिक रूपेण घोषितं यत् इयं प्रस्ताविता सामरिक सहभागिता प्रमुखाणां क्षेत्राणां विकासार्थं सहैव पारस्परिक सहयोगस्य विस्ताराय च कञ्चन व्यापकं तन्त्रं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे आयोजिते एकस्मिन् प्रवासी भारतीय समुदायस्य कार्यक्रमे उद्घोषितवान् यत् तत्रत्यः भारतीय समुदायः भारत न्यूजीलैंड देशयोः वर्धमानायाः सहभागितायाः अत्यन्त महत्वपूर्णः आधारस्तम्भो वर्तते। ऑकलैंडतः वेलिंगन पर्यन्तं, क्राइस्टचर्च तः क्वींसटाउन पर्यन्तं न्यूजीलैंडस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे उष्यमाणः भारतीय समुदायः एतस्याः संयुक्त यात्रायाः एकः अभिन्नः भागो वर्तते। स्वसंबोधने प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारत न्यूजीलैंड सम्बन्धः स्मृतये समानमूल्याय सहैव उज्ज्वल भविष्याय च निर्मितः। अवसरेऽस्मिन् न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्यमुना उभय देशयोः मध्ये वर्धमानस्य सामरिक आर्थिक सहयोगस्य अथ प्रगाढ सम्बन्धस्य विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रावोचत् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा क्षमतां सहैव आधुनिक प्रौद्योगिकीं सुदृढीकृत्य एकां बलशालिनीं आत्मनिर्भरां रक्षासेनां निर्माति। तेन प्रतिपादितं यत् आगामी युद्धेषु कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः एवमेव अन्येषां नवीन तन्त्राणां प्रयोगः भवितुमर्हति, परञ्च अन्तिमरूपेण विजयः राष्ट्रिय संकल्पेन वीर सैनिकैः सक्षम सैन्यशक्त्या एव प्राप्स्यते। रक्षामन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी पारम्परिक सैन्यबलं च परस्परं पूरकौ स्तः। सहैव भारतम् आत्मनिर्भर भारत संकल्पस्यान्तर्गतं द्वयोः अपि क्षेत्रयोः उत्कृष्टं प्रदर्शनं विधातुं कटिबद्धं वर्तते। श्रीराजनाथसिंहः अद्य विशाखापत्तनम् नगरे स्वदेशीयायाः प्रोजेक्ट 17A प्रणाल्याः षष्ठस्य INS महेन्द्रगिरि नामकस्य स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोतस्य

नौसेनायाः पूर्वीयपोतदले सम्मेलनं समारोहं सम्बोधयन् आसीत्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन अथ राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अद्य महाराष्ट्रस्य नागपुरे तृतीय ब्रिक्स परिवहन मंत्रिणां परिषदः अध्यक्षतां विहितवान्। सम्मेलनस्यास्य समाप्त्यन्तरं वार्ता

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन बंदिता मिश्र जुहार पहला मुखिया खबर विद्यालय पढ़ा बहित होइथिबार भूलर अपराधिक तदंत लगी मुख्यमंत्री निर्देश कंसारीगुड़ा आलुमिना रिफाइनरी प्रकल्पर संप्रसारण लगी बिर्ला ग्रुप्र प्रस्ताव खर्चा होगा अयत्का 12,000 कोटी टंका पूरी रथयात्रा सुरक्षा व्यवस्था बाबदे समीक्षा कले पुलिस महानिर्देशक और भुवनेश्वर न स्वल्प कार्बन तैयारी सामान और स्थायी विकास उत्कर्ष केन्द्र प्रतिष्ठा लगे बुझाणा पत्र स्वाक्षरित एथर पूरा खबर राज्य 1-8 श्रेणी विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटि बाबद सब् प्रक्रिया अपराधिक तदंत मूल करवा लगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश देछन क्राइमब्रांच आरक्षी अधीक्षकों पाखे मामला रुजू करबारके राज्य शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी रो निर्देशक को श्री माझी कहिछन आगनु पाठ्यपुस्तक भूल बाबदे तदंत लगी उन्नयन कमिश्नर कर अध्यक्षता थी गोटे कमिटी गठन करा जाइतला कमिटी रिपोर्ट अनुसार एससीईआरटी रो

0: नमस्कार श्रोता बंधु, आपण मानक आज बनानी कार्यक्रम को सबुज स्वागत।
1: मत रक्षा कर, ए दुर्दिन रे मो पाखरे टिके ठिया हुआ स्नेह

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम

0: वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436793084915523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन

0: मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रुपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक

0: नशीली हवा।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, गीत रचना गुलजार साहब की और धुन सलील चौधरी की है।
4: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है जिंदगी और हम। इस गीत को पंडित शिव कुमार ने लिखा है और तर्ज रोशन की है।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कमर जलालाबादी का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला है इकबाल कुरैशी ने। युगल स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है ये दिल किसको दूं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनहरी नागिन फिल्म का गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, फारूक केसर के बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन।

इस दो गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: प्यार का।
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई आए।

0: चलिए दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज के फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: जाए।
1: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
0: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
1: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुन टुन।

0: उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

0: दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत

0: शिकायत कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज, अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई।

0: नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: सुनिले हिंदी रे संवाद आकाशवाणी दिल्ली रो। एथिसहित शेष होला आज दिन रे अमर प्रचार हेबाक थिबा समस्त कार्यक्रम आकाशवाणी राउरकेला 102.6 FM ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ତେବେ ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗାମୀକାଲି ଆମର ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ସୂଚନା। ଆଗାମୀକାଲି 12 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 6:05 ରେ ଶୁଣିବେ ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ଆଗାମୀକାଲି ପ୍ରଚାର କରିବୁ 222ତମ ଭାଗ ସକାଳ 6:35 ରେ। ସକାଳ 7:25 ରେ ରହିଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ରାଇଜ। 8:30ରେ ଶୁଣିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଧୁରୀ। ଆଗାମୀକାଲି ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ନୀତି ଓ ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ।